0: खर्चा कितना है?
1: बहुत बढ़िया यार, पर एक गल दस, तू अपने बच्चे दी आरईएसपी करवाई है?
0: नहीं तो
1: भाई आरईएसपी तोड़े बच्चे दी सुरक्षित भविष्य दी चाबी है। आज ही ऑल काइंड इंश्योरेंस तो गुरजीत सूरी नु कॉल करके आरईएसपी करवा। इना कोल क्रिटिकल डिसेबिलिटी ते स्टूडेंट इंश्योरेंस दे बेस्ट प्लान्स भी हन।

दिन सोमवार 12 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ब्रैम्पटन फेयर ग्राउंड 12942 हार्डनेक रोड कैल्टन विखे करवाया जा रहा है। पंथ दे सरमौर रागी जथे पदम श्री भाई साहब हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले, संत अनूप सिंह जी ऊना साहिब वाले, भाई अनंत वीर सिंह जी एल ए वाले, भाई साहब जगजीत सिंह जी बबीहा दिल्ली वाले, प्रोफेसर परमजीत सिंह जी पटियाले वाले, भाई मनिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले। फॉर मोर इनफॉरमेशन कॉल पंजाबी विरसा रेडियो दे सिंह अजीत नूं कीती जा सकती है 6474481000 6474481000। सेवा भेजने वास्ते सेवा2022@yahoo.com ते अपनी सेवा भेज सकते हो।

नमस्कार दोस्तों, डोगरी रेडियो सुनना मता मता स्वागत है। ते मैं यहाँ डोगरन सोल नेहा शर्मा दे आई हूँ डोगरी रेडियो। ते आज मैं तुसें लगी हूँ सुनान डुगर प्रदेश दे डांस। जियां कि हर प्रदेश का कोई ना कोई फोक डांस होंदा है, उआं के इत्थे भी कुछ फोक डांस होंदे ने। जेड़ा सारे फोक डांसी को जेड़ा सब तो मशहूर डांस है फोक डांस, वो है कुड डांस। ते बाकी और जेड़े फॉर्मन डांस दे उन फुमनी, चौकी, भांगड़ा, गिद्दा, किकली, ढोल डांस ते कन्ने के कन्ने जागरण। ते ये है कुछ जेड़े फोक डांस डुग्गर प्रदेश च होंदे। तो सुनो इस एपिसोड का एक गीत।

वेलकम बैक दोस्तों, डोगरी रेडियो सुनना मता मता स्वागत है। मैं यहाँ डोगरन सोल नेहा शर्मा ते अस गल करा दे डुगर प्रदेश दे नृत्य दे जो इत्थे दे फोक डांसेस ने जिंदे च मैं जेड़ा पर्सनली पसंद है ते जो कि बड़ा गे अट्रैक्टिव ते बड़ा गे मशहूर डांस है वो है कुड डांस। कुड डांस जेड़ा है वो स्पेशली किया जाता है देवते दी स्तुति दे टाइम या फिर खेती दे टाइम हार्वेस्टिंग दे टाइम ते कुछ मेले भी ये ने जिथे जरूर एक कुड डांस परफॉर्म होंदा है। कई ऐसे त्यौहार ने बैसाखी का त्यौहार है लोहड़ी का त्यौहार है उस टाइम पर भी ये परफॉर्म किया जाता है कुड डांस। लोग अपने अंदर की जिहड़ी खुशी है वह व्यक्त करते हैं इस डांस के जरिए देवते की स्तुति करते हैं इस डांस के जरिए। ते कन्ने के कन्ने एक अलग तरह की ड्रेस होंदी है जो इस डांस करने कोला पहले लोग वेयर करते हैं। ये डांस बेसिकली मेल डोमिनेटिंग डांस है। वैसे तो अजकल कुछ कॉलेज स्कूल कोरियोग्राफर्स की करते हैं ये विच कुड़ियां भी करुट दे नैट पर एक टिपिकल जेड़ा डांस है फोक वो मेल डोमिनेटिंग डांस है जिदे च जिन्ने भी भाई ने वो सैमी सर्कल ते फुल सर्कल च घूमते हैं गोल गोल कुछ स्टैप करते हुए बड़े हल्के हल्के मिठे मिठे स्टैप करते ने ये ते स्टैप करते करते जेड़ा ये डांस का रिदम होंदा है उदे कन्ने कन्ने इंदी जेड़ी लय है वो बद्दी ते कटदी है। ये डांस किया जाता है एक स्पेशल तरह के जो डोगरी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे ने उनके कन्ने ते कन्ने के कन्ने बांसुरी दी ते ड्रम दी आवाज़ ढोल दी आवाज़ भी बिच शामिल की जाती है। बड़ा के अलग तरह का कुड डांस का म्यूजिक होंगे जो कन्ने ही सुनेंगे बड़ा अच्छा लगता है ते इदे पर बड़ी मिठी मिठी डांस की लय बनती है। तो सुनो अगला गीत।

सुना दे डुग्गर प्रदेश दे कुट डांस दे बारे च मेरे द्वारा में या डोगरन सोल नेहा शर्मा ते ए जियां कि मैं तुसीं दस्या नाग देवता दी स्तुति च भी ए किता जांदा है ते जम्मू प्रदेश दे जेड़े कि पहाड़ी इलाके नूं उत्थे ए ज्यादा किता जांदा है भद्रवाह होया मानतलाई होया पर अजकल कुछ लोग ब्याह शादियों च भी स्पेशल अट्रैक्शन वास्ते कुट डांस ट्रुप इनवाइट करते ने ते अपने कल्चर ही प्रमोट करते ने कुसे ना कुसे बहाने करने तुस भी यूट्यूब लिंक पर चेक करी सकते हो कुड डांस ते उत्थे तुस देखी सकते हो कि कितना अच्छा एक वाइट कलर दी ड्रेस होंदी है जेड़े सारे मेल पांदे न चूड़ीदार जेड़ी डोगरी साड़ी ड्रेस है चूड़ीदार पजामी ते कन्ने एक उपर एक कमीज पांदे ने गोल पूरे इंदी जेड़ी अटायर होंदी है वो चिट्टे रंग दी होंदी है ते कन्ने के कन्ने पिंक या लाल रंग दी ए ओदे उपर कुछ चुन्नी टाइप कुछ बंदे न ते बड़ा गे अच्छा लगदा है सारे एक ड्रेस सेमी सर्कल ते सर्कल च घूमदे ते म्यूजिक दी जड़ी मिठी मिठी लय है बड़ा गे अच्छा समा बनांदी है हुन मेरा भी टाइम होई दा जाने दा ते तुस मी भी इजाजत दियो मैं फिर परती आगी टिल देन बाय बाय नमस्कार दोस्तों।

0: संगीत, देश दुनिया दिया ताजा तरीन जानकारियां ना लबरेज, महकंदा सौगात मंगदा, सांचा विरसा,
1: सोमवार तक शुक्रवार, 5:30 AM सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक, क्रिसमस डे पर चार ते पसार ले, संपर्क करो,
0: सांचा विरसा दी टीम नू, 647-835-5294
2: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहिबा वे चित दे महावाक अनुसार सारे ही नगर निवासियां नू बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

करो 4025 ब्रेंडन गेट ड्राइव मिसिसागा प्योर पंजाबी 6473391 72। कॉल करो गुरजीत रंधावा 6473389172।

0: sad, jump are sad, blue are sad, happy sad, not it, horsey be sad, bole, sonny hall, sad, see a car.
1: मम्मी पापा दे वीजे ली सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पांटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है
2: शमी पठल होरा ने तोड़ा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है
3: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल
4: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील ले याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
3: 416-917-7763 416-917-7763Life insurance, visitor insurance, super visa insurance, critical illness, disability insurance, RESP, travel insurance, convert expensive mortgage insurance to term insurance.

0: हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स, कॉल 416-823-9505 और विजिट summitrealtyexperts.com. Summit Realty Expert.
1: इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: कला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू।

0: सिमरन बड़ी पतली हो गई है, कुछ खांदी खुंदी नहीं?
1: ले दस, काम तो जा, मैं घरे रोटियां बनावा।
0: तो टिफिन लवा ला।
1: घर का स्वाद कित्थों मिलदा वारो।
0: मतलब तू तवा किचन दे फूड नहीं टेस्ट कीता? तवा किचन बिल्कुल घर वर्गा स्वाद। कस्टमाइज टिफिन पैकेजेस अवेलेबल। फूड क्वालिटी ते क्वांटिटी एकदम लाजवाब।
2: 50 सनीवेल गेट, ब्रैम्पटन, माउंटेन एश एंड बवेडा इंटरसेक्शन, या विजिट करो www.tawakitchen.ca। 905-790-1699 905-790-1699
3: कि तुसी भी इन्वेस्टमेंट दे इस दौर च प्रॉपर्टी च इन्वेस्ट करना चाहुंदे हो, कि तुसी भी प्रॉफिटेबल आउटकम ले प्रॉपर्टी लब रहे हो, फिर फेयर डी रियल्टी रिप्रेजेंट्स आउटस्टैंडिंग फार्म हाउस, 28 एकर लैंड विद टू रोड फ्रंटेजेस, डबल कार गराज, ग्रीन हाउस एंड वर्कशॉप। यही नहीं, 407-418 हाईवे तो सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी ते। फॉर बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स कॉल द बेस्ट टीम, फेयर डी रियल्टी, ब्रोकर ऑफ रैकेट हरदीप पंदेर, एंड 905-671-2000।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਣਤਾਸ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਸ ਤੱਗੜ ਦੇ ਨਾਲ।
1: Disclaimer, the content shared on this radio show is for informational and entertainment purpose only. The hosts are not liable for any actions taken by listeners or callers based on the information provided. Enjoy.
2: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6476702-2023-647-702-23।
3: मैं नवा कार लिया, तेनू पता है प्रॉपर्टी इतनी महंगी है, नाले मैं एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ली है, एक बाई मैं बेसमेंट भी बनाई है ब्रम्पटन वाले घर दी, नाले मैं सोचता हूँ वॉशर एंड ड्रायर भी चेंज कर ही दईए, हुन समझ नहीं आ रहा अप्लायंसेस कित्थों लईए।
4: हो जी, एदे च समझण वाली केड़ी गल है, सारे कम वाले इक्को जगह। चलो मिसेस अगा स्टील ते अप्लायंस जंक्शन ते, इना दे प्राइस ते सर्विस नु कोई बीट नहीं कर सकता। तुसी 6 मंथ तक दी पेमेंट भी बनवा सकदे हो, सारे ब्रांड्स दी ऑथराइज्ड डीलर्स भी ने। मिसेस अगा Appliance Junction, call 905-450-0054, 905-450-0054.

IPL चल रहा है ओनली ऑन करो स्ट्रीम. Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.

0: गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाडला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशा बात उम्मीद करते हैं तो वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। मौसम ठीक ठाक सी, नॉट दैट बैड, इट वाज ओके, और अच्छे दिन गुजरे होंगे। साड़ी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नेशनल इंटरनेशनल खबरों ना तो जोड़ के रखिए। अगे चल के किरण वतन दूर पेश करेंगे और अपने मनप्रीत जी इंडिया तो खबर पेश करेंगे और गीत संगीत भी होंगे। सब तो पहला छतरी छात्र रिपोर्ट हाजिर है। अज का जो तापमान, पहला सूरज जी की गल करिए, 557 से सूरज सिंह आया, 830 से चले जाना मामा चंद सिंह लवारिस जहा है, 158 से सवेरे सवेरे आया, रात को 11:09 है। कहते सूरज रात को चढ़ता, चंद रात को चढ़ता, चंद तो भाई दिने भी आ जाता अजकल। खैर, तापमान 15 डिग्री मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड, कल 14 डिग्री मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड, बुधवार को सारा दिन छतरी छाता की लोड़ पेगी, बारिश पैंदी रहेगी, तापमान 15 डिग्री। थर्सडे ते फ्राइडे नु तापमान 16 डिग्री मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड, सैटरडे नु मोस्टली सनी, तापमान 15 डिग्री रहेंगे। गल करिए आपां पहला ना पेट्रोल दी, जे देखा जावे जदों दा युद्ध शुरू होया 50% प्राइस उपर जा चुकी है, अज अधी रातों प्राइस चेंज नहीं होएगी। मंडियां दे भाव च यह है कि जनक जुलो दे सहयोग नाल तुहानू दसदे आ कि जिहड़ा साडे मंडियां दे भाव आ किधर नूं जा रहे ने। ओहदे विच दस्सिया जा रहा टोरंटो स्टॉक चेंज, डाओ, नैसडा, क्रूड ऑयल, डालर, सोना, सारे दा सारी मार्केट आ जिहड़ी उपर चल रही है। कल शमी टिक्का जंक्शन दे जाण दा मौका मिलिया, उन्हां दे जिहड़ा कहिंदे हुंदे अपने बैंकुट हाउस उत्थे छोटी जी पार्टी रखी हुई सी, बच्चे दा सोलवां जन्मदिन सी। इट्स ब्यूटीफुल, फूड वाज फैंटास्टिक। तुसीं भी छोटी वड्डी कोई पार्टी देखो, इक तां जे सोफियां ते बहि के पार्टी करनी है, घर आला माहौल होवे, उन्हां दा लाउंज हैगा, 60-70 बंदे उत्थे बहि जांदे आ। जे बैंकुट हाल आ उन्हां दा जिहड़ा उत्थे करनी आ, 70-80 बंदे उत्थे बहि जांदे आ। जे रेस्टोरेंट जाके खाना उत्थे भी खा सकदे हो। सो जे पार्टी करनी आ बजाय कि घरे भज्जे फिरो, बीबियां भी भज्जियां फिरदियां, बच्चे भी भज्जे फिरदे आ, यार आराम नाल उत्थे जाओ, बैठ के खाओ पियो, ऐश करो। यू नो टिक्का जंक्शन 647-429-4040 उन्हां दा नंबर आ। टिक्का जंक्शन की गल कीती है तां आ सुनो।
1: टिक्का जंक्शन लेके आए ने स्पेशल ऑफर्स फॉर फेस्टिव सीजन। खास फेस्टिव सीजन ले कैटरिंग स्टार्ट सिर्फ 9.99
2: च, जिस विच मिलनगियां 8 आइटम्स। ए लाइव कैटरिंग भी करदे ने,
1: फंक्शन वड्डा होवे या छोटा, कैटरिंग वाला ता सिरा ला देंगे।
2: एना कोल शानदार पार्टी हॉल भी आ, वो भी रीजनेबल फूड प्राइसेस ते।
1: इस फेस्टिवल सीजन बनाओ अपनिया खुशियां नु दुगना ते पहुंचो टिक्का जंक्शन।
2: कॉल 6474294040,
1: 6474294040। टिक्का जंक्शन, खुशियां दा सेलिब्रेशन।
3: ऐ मेरे रब जी, मेरा बिजनेस नहीं जे चलता, बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख ले ने, कोई गल नहीं बनती। बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $50 दा प्रसाद चढ़ाऊंगा, बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
4: ओए मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, देव तात्रे नु कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला भाई, स्पेशल पैकेज ने उन्हां कोल, फोन कर 416-677-0609।
5: ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जा ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आहे ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
6: ताया साडा मीट मच्छी दा बड़ा ही शौकीन आ, कहिंदा पार्टी विच नॉन वेज स्पेशल होना चाहिदा। बस वे असी करता फोन पंजाबी बाय नेचर वालियां नूं, ओह घरे आके लाइव कुकिंग करके गए। पंजाबी बाय नेचर वालियां नूं कॉल करियो,
7: पंजाबी बाय नेचर, एयरपोर्ट एंगू वेट ते गो रूट, 9057944667।
8: यार क्लोजिंग नेड़े आ गई, पेपर वर्क हजे भी कंप्लीट नहीं होया।
9: ओहो फिकर ना करो, कॉल करो रविंदर
2: ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹਰਮਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟਿਡ ਟੀਮ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਸੇਲ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗਸ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਮੌਰਗੇਜਸ ਬੋਰੋਵਰ ਤੇ ਲੈਂਡਰ ਸਾਈਡ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਐਕਸਪਰਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼
9: ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੀਲ ਹਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮੂਥ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 448500 ਟੋਰਬ੍ਰਮ ਰੋਡ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਔਨ L60 5C6
2: ਕਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਤੰਬਰ 6477104659
9: ਜਾਂ ਹਰਮਨ ਢਿੱਲੋਂ 6479866760
0: ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡਣ ਦੇ 100 ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री दी तक गाली कुछ रे तो माँ भैया जे चारे पासे तुसी भी आओ 1850 Albion Road in Rexdale 416-213-1165
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार
2: ओए कल्ला मैं नहीं अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने
1: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा
2: हां जी तुसी भी नोट करो इंश्योरेंस कोई भी होवे
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते
3: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca
4: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry the intersection upper to see cheap flight tickets di pal de vichon Toronto to Delhi Delhi to Amritsar de route options sunu chahide ne ja tusi visa services di pal de vichon puri family vacation upar jaan di soch rahe ne jithe tanu all inclusive vacation packages vi milde ne pahunchna waji Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upar call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection over
5: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज
6: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा कॉल 905-460-8888 दैट्स 905-460-8888
5: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ
7: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको दौरा पै गया टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर ले गया आटा दाल चावल आले सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट दूसरी लोकेशन 20 ग्लिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन फोन 289-801-0566 नोबेल फ्रेश फूड
8: जे मैनू यार ना मिले ते मर जावा जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावा
9: What's up everybody, this is Jasmine Sandler ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर with सुखी निजर

0: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है।
1: 1656 01 57 01 57 आओ ताजा स्वादला खाओ ते 100% दी कैपेसिटी वाले शानदार बैंकुट हॉल विच अपनिया खुशियां दे जश्न मनाओ। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन कर देने केटरिंग बिग और स्मॉल विद लाइव फूड ट्रक 11 AM to 6 PM ऑल ड्रिंक्स 50% ऑफ। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते कॉल करो 647 429 4040। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन।
2: एक लाइफ है जिसे लव है
3: ये कहते मुझसे सब है
4: अरे एक घर है जिसका ड्रीम है।

0: 416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551- कैनेडा दे स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन हुणे ही कॉल करो 416-456-6161
2: Team Sidhu leke aaye ne Niagara Falls shehar de vich nave traditional townhouses with double car garage, four car parking, te builder de vallo free finished basement, extra rental income delay, price 525,000 525,000 ehe traditional two story towns ek prime Niagara Falls location de taiyar ho rahe ne Clifton Hill the actual Niagara Falls ton takriban 5 km dur closing spring 2027 2027 de vich ehe traditional two story towns 1750 square foot to leke 1800 square foot tak taiyar ho rahe ne 3 to 5 bedrooms 3.5 to 4.5 bathrooms free finished basement from the builder double car garage total 4 gaddiyan di parking hai free 5 appliance package free AC, free assignment clause, free upgraded quartz countertops, zero development charges. Price 525,000 Extended deposit hai, total 60,000 deposit kishtan de vich pay karna hai. Aaj hi team Sidhu nu call karo 416-302-0016 416-302-0016 416-302-0016 416-302-0016 Team Sidhu
3: ਡਰਾਈਵਰੀ ਸੂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ
4: ਅੱਜ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ

0: What is the reason?
1: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नु मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे
4: S&S Lawyers को इन्ना सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई आज ही S&S Lawyers नु कॉल करो 416-655-2000
5: जे तुसी भी करना चाहुंदे हो अपना खुद दा रेडियो प्रोग्राम ता आज ही सानू कॉल करो 647-504-1557 टेक स्पिरिट हजे तक भी तुसी अगर अपने सिक्योरिटी कैमरे नहीं लगवाए ता बिजनेस या रेजिडेंशियल अपने घर लई सिक्योरिटी कैमरे रिकॉर्डिंग अते दुनिया भर दे विच किते भी कैमरे चेक करो अपने फोन दे राही टेक स्पिरिट 905-621-4100 तुसी होम ऑटोमेशन कोई भी करवानी है तुसी अगर करे अपना होम थिएटर होम सिनेमा तैयार करवाना वेरी प्रोफेशनल टीम टेक स्पिरिट 905-621-4100 905-621-4100 ते फोन जरूर करो ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 647-504-1557 ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਤੇ।

एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505।

0: आप भी अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर आएं। वेज थाली, चना भटूरा, अमृतसरी कुलचे का स्वाद बाय वन गेट वन ऑफर के साथ जरूर उठाएं। फ्रॉम 10 AM टू 8 PM सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशन 15 Fender Way 85 Montpelier Street 275 Garden Brook Trail in Brampton।
1: सिंपली इंडियन सिंपली इंडियन सिंपली इंडियन वाले नूं याद जरूर रखो। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੋ ਕੁ ਬੋਲ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਵਾਰਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਭਾਬੀ, ਬੜਾ ਟੌਪ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਦੋ ਕੁ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ।